एक्स का एफ एम कौआ ओरंगो पंगम तन कुछ आउंगो प्रोग्राम को से उजी से का के रदो कुसी दे कौआ ओरंगो एम तन छोंगो उनको ऐसा जिमन का के ओरंगो कोंगा अलि को प्रोग्राम उनको ऐसा को सी गन कों का के रदो कुसी दे के कों कौआ ने खमनी ते गन को सुपा मो टाउन को ले नुई एतने को आ चितवा के मासी दे का उवा लोंगसा agawala pangam go chungo ta wala ngam ho jita ba kwa de ka wa ker ka ma so he ke per kera wa chi ke mtan chung ba ola ngi cha ang ku e sa go ji chi ke ma ngam ma so tan du ta ngam ba ola